和信德生特别受欢迎。在印度海德拉巴、新德里、旧德里和印度其他地区，尤其是印度北部是非常有名。

श्री रामचंद्र की स्तुति के पश्चात गुरु के चरण कमलों की वंदना की है। श्री राम सहित सभी दशरथ कुमार विवाह करके अयोध्या आ चुके हैं, जहां नित्य नए मंगल हो रहे हैं, आनंद के बधावे बज रहे हैं। अयोध्या नगरी का रूप कभी उस चौदहों लोक रूपी पर्वत की तरह दिखाई देता है, जिस पर पुण्य रूपी मेघ सुख रूपी जल बरसा रहे हैं, तो कभी उस सागर की भांति जिसमें रिद्धि सिद्धि और संपत्ति रूपी सुहावनी नदियों का जल उमड़ घुमड़ कर आ मिलता है। सबकी अभिलाषा है कि राजा श्री राम को युवराज पद दे दें। एक दिन दर्पण में अपनी छवि देख राजा दशरथ अपने मुकुट को सीधा कर रहे थे कि कानों के पास के केश सफेद दिखे, मानो बुढ़ापा उपदेश कर रहा हो कि ज्येष्ठ पुत्र को युवराज पद देकर उन्हें अपना जन्म और जीवन सफल कर लेना चाहिए। अतः एक दिन शुभ समय देखकर हर्षित मन से उन्होंने गुरु वशिष्ठ को अपना विचार जा सुनाया।

0: अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस से संगीत में पाठ। 6:55 होने को हैं, अब समाचार प्रसारित किए जाएंगे।
1: इयम् आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः जतिन शर्मा।

0: चर्चायाः उत्तरं प्रददन् कार्मिकराज्यमन्त्री डॉक्टर जितेन्द्रसिंहः न्यगादीत् यत् नियमस्य सुदृढीकरणाय सहैव पत्रगोप्यताभङ्गप्रकरणेषु शीघ्रन्यायार्थम् एतत् संशोधनम् आनीतम्।
1: सरकार की प्रतिबद्धता का आप इसी बात से अनुमान लगा सकते हैं कि इसी विधेयक के लाने के साथ ही साथ हमारे लॉ मिनिस्टर्स की ओर से भी एक प्रस्ताव जारी कर दिया गया। स्पेशल फास्ट ट्रैक फोर्स है, इनको स्थापित करने का भी क्रम प्रारंभ किया जाए। उसमें दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड में पहले ही इन्होंने गठित कर दिया है और आने वाले दिनों में बाकी स्थानों पर भी।
0: राज्यसभायां 26-द्विसहस्रतमस्य राष्ट्रिय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयकं पारितम्। एतत् विधेयकं राष्ट्रिय गौरव अपमान निवारण अधिनियमे 171-तमे संशोधनं करोति। अस्य विधेयकस्योद्देश्यं वन्दे मातरम् इत्यस्मै राष्ट्रगीताय अपि राष्ट्रगानेन समं वैधानिकसुरक्षाप्रधान

0: माध्यम से दंडनीय प्रावधान करने का विचार हुआ है। वर्तमान संशोधन का उद्देश्य राष्ट्र गीत वंदे मातरम के जान बूझ कर किए गए अपमान को भी उसी प्रकार के दंडनीय बनाया जाए जैसा कि वर्तमान कानून में है। हर भारतवासी के राष्ट्र प्रेम का उद्घोष है वंदे मातरम, विकसित भारत का संकल्प है वंदे मातरम।
1: ओडिशा राज्ये अतिवृष्ट्या उच्छ्वसित नदीभिश्च विकट जलौघस्थितिः दुरापद्यते। अस्माद् धेतोः चत्वारः जनाः मृत्युमुपगताः, सहैव चतुर्लक्षाधिकाः जनाः प्रभाविताः अभवन्।

सत्वाल लियार इंडिया भर असल वनी गातकान पॉपुलासी हरी मौयांग दिकुर मुलालुई मेथड इल्मिया हिंगा लबीदारी दुआ काली लिपा सजगता हुन दुआरिवु एंदा सर्वे ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन दुआरिवु दुआ पुलु दुआ मंचतात पॉपुलासी हरी मौ दे इंडिया मंच पाई तिगरिबु एंडा अमरात उसलापान पुलु दुआ एक और सर्वे ताहुन दुआरिबु दुआ पुलु दुआ इनी मंचकुप दुआ पुलु नगरा बागियान दन मल लिबात कान पनल लुआस लुसुरन विलाया सलुआस लबीदारी एंडा अमरात उस एम्पत पुलु सातुरिबु किलोमीटर नेंगान बर्जालान काकी इनी मरुपकान साला सातु पर निलायान संस्था सत्वा लिया तरबसार दान पालिंग कॉम्प्रिहेंसिव दी दुनिया पमुलिहान यांग लुआर बियासा इनी मंचन मिनकान दुकुंगान कविजान यांग बर्कलांजुतान कॉन्जर्वासी बर्वासी साइंस सर तता तकलूला कलम बागान यांग कुआत पर लुंडिंगान हतिबात जंकापान जंग पमंतुआन यांग केतात दान पलक सकान यांग तरोड और तर्क ऑर्डिनासी तिरुस मंपर कुआत उपाय कॉन्जर्वासी हरिमावते चलुरु दुनिया हरिमावते चलुरु इंडिया करांगा कबिजान इंडिया उन्तु कॉन्जर्वा

0: बेटा मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें पीएम

0: सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की, मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। लोकसभा ने लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पारित किया। विधेयक में प्रश्न पत्र लीक मामले में दोषी पाए जाने पर 10 साल तक कारावास का प्रावधान। बिहार गुजरात

और अब समाचार विस्तार से। लोकसभा ने लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक में प्रश्न पत्र लीक मामले में दोषियों को 10 वर्ष तक के कारावास और 10 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त अपराधियों की संपत्ति भी जब्त कर ली जाएगी। मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए प्रत्येक राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश को दैनिक सुनवाई के लिए विशेष

गृहमंत्री अमित शाह ने यह विधेयक पारित होने पर देश के प्रत्येक विद्यार्थी को बधाई दी है। श्री शाह ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यह विधेयक लोक परीक्षाओं की शुचिता भंग करने वालों को कड़ी सजा देने वाले पुख्ता प्रावधानों के माध्यम से देश के युवाओं के सपनों और आकांक्षाओं की रक्षा करता है। उन्होंने आश्वासन दिया कि नरेंद्र मोदी सरकार विद्यार्थियों के भविष्य को खतरे में डालने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शेगी नहीं और उन्हें कानून के पूर्ण दंड का सामना कराने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। अपने संदेश में शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि इस विधेयक से परीक्षा में होने वाली धांधली से निपटने के लिए सख्त कानूनी ढांचा तैयार हो गया है। उन्होंने कहा कि इस विधेयक का उद्देश्य पेपर लीक के तंत्र को खत्म करना और परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता, विश्वसनीयता और निष्पक्षता को बढ़ाना है। राज्यसभा ने राष्ट्रीय सम्मान की रक्षा के लिए राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक वंदे मातरम को राष्ट्रीय गान के समान वैधानिक संरक्षण

0: जनता दल की रेखा कुमारी के बीच माना जा रहा है। उपचुनाव में एक तरफ जहां भाजपा ने अपनी परंपरागत सीट बरकरार रखने के लिए पूरी ताकत लगाई है, वहीं जनसुराज भी इस चुनाव में जीत के जरिए शहरी मतदाताओं के बीच अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश में है। राजद भी अपने पारंपरिक जनाधार के सहारे मुकाबले को दिलचस्प बना रहा है। सविता पारेख, आकाशवाणी समाचार, पटना।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
2: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4555 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि लाल सागर संकट और वैश्विक उथल पुथल के बावजूद चालू वित्त वर्ष में अब तक भारत के माल निर्यात में 15% की वृद्धि दर्ज की गई है। श्री गोयल ने जेआरडी टाटा स्मारक व्याख्यान देते हुए कहा कि बढ़ते भू राजनैतिक तनाव और वैश्विक व्यापार मार्गो में व्यवधान के बावजूद देश का माल निर्यात मजबूत बना हुआ है। उन्होंने कहा कि भारत का निर्यात देश की आर्थिक

0: अगस्त 2022 में एक एम्फी थिएटर के मंच पर हुए हमले में हत्या के प्रयास के लिए आरोप में न्यूयॉर्क की जेल में 25 साल के लिए कैद में है। संघीय दोष सिद्धि में आजीवन कारावास की सजा भी शामिल है। लेखकों की सुरक्षा पर बात करने वाले रुश्दी पर दर्शकों के सामने 15 बार चाकू से हमला किया गया। वे गंभीर रूप से घायल हो गए थे और उनकी दाहिनी आंख की रोशनी चली गई थी। अमेरिका ने कुछ समय के बैलिस्टिक मिसाइलें दागी थीं। श्रावण महीने की वार्षिक कांवड़ यात्रा आज से शुरू हो रही है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: कांवड़ यात्रा को लेकर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में यात्रियों की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए एनसीआरटीसी ने नमो भारत ट्रेनों के फेरे बढ़ाने का फैसला किया है। देवघर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए रेलवे प्रशासन ने गोरखपुर से 2 श्रावणी मेला स्पेशल ट्रेनों की घोषणा की है। अयोध्या में प्रशासनिक अधिकारियों ने राम की पैड़ी और नया घाट क्षेत्र का निरीक्षण किया। वहीं वाराणसी में श्री काशी विश्वनाथ धाम मंदिर ट्रस्ट के सीईओ विश्वभूषण मिश्र ने बताया कि यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा के ये विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने पैरा एथलेटिक्स में पुरुषों की 100 मीटर T47 स्पर्धा के फाइनल में स्वर्ण और रजत पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। भारत के दिलीप महादुगावित ने 10.71 सेकंड का समय लेकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया, जबकि मोहम्मद बासिल मोर सिंगानखथ ने 10.83 सेकंड के साथ रजत पदक हासिल किया। भारत 3 स्वर्ण, 9 रजत और 3 कांस्य पदकों सहित कुल 15 पदकों के साथ 8वें स्थान पर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में पुरुषों की 100 मीटर T47 स्पर्धा में दिलीप महादुगावित को स्वर्ण पदक और मोहम्मद बैसिल मोर सिंह नाकाठी को रजत पदक जीतने पर बधाई दी है। मौसम विभाग ने आज मध्य महाराष्ट्र और पश्चिमी मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वोत्तर भारत, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, केरलम और माहे, कोंकण और गोवा, कर्नाटक

कायम करे। अमले, शिकायत और पेंशन के वजीर डॉ जितेंद्र सिंह ने बिल पर बहस का जवाब देते हुए कहा कि कानून को मजीद सख्त बनाने के लिए बिल में तरमीम की गई है ताकि पेपर लीक मामलों में जल्द इंसाफ को यकीनी बनाया जा सके। बिल को कल मंजूर किए जाने के बाद ऐवान जेरिंग की कार्रवाई आज सुबह 11 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी गई। राज्यसभा ने कौमी ताजीम की बेहरमती की रोकथाम से मुतालिक तरमीमी बिल 2026 को कल मंजूरी दे दी। ये बिल कौमी ताजीम की बेहरमती की रोकथाम से मुतालिक कानून 1971 में मजीद तरमीम करेगा। इस मुजवदा कानून के जरिए वंदे मातरम को कौमी तराने जनगण मन की तरह कानूनी तहफ्फुज़ हासिल हो जाएगा। इस मुजवदा कानून के जरिए कौमी ताजीम की बेहरमती पर 3 साल की जेल, जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। राज्यसभा में इस बिल

0: और पोलिंग से मुतालिक सभी सरगर्मियों की वेबकास्टिंग के जरिए निगरानी की जा रही है। इस हलके से कुल 2,20,410 राय दहिंदगान वोट डालने के मजाज हैं। आजादाना और मुंसिफाना चुनाव को यकीनी बनाने की गरज से बड़ी तादाद में मरकजी और रियासती सिक्योरिटी फोर्सेज को तैनात किया गया है। बिहार सरकार ने दरभंगा में रैयाम और मधुबनी में साकरी में चीनी की बंद मिलों को दोबारा खोलने का फैसला किया है। वजीर आला सम्राट चौधरी की सदारत में कल काबीना की एक मीटिंग में सिलसिले में तजवीज को मंजूरी दी गई। मीडिया के अफराद से बात करते हुए एडिशनल चीफ सेक्रेटरी अरविंद कुमार चौधरी ने कहा कि काबीना ने खेलों से मुतालिक बिहार की पॉलिसी 2026 को भी मंजूरी दी है। मीटिंग में माली साल 2026-27 के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत 97 करोड़ रुपये से ज्यादा लागत की स्कीमों के निफाज को भी मंजूरी दी गई है। शहरी तरक्यात के शोबे में अमृत 2.0 के तहत तकरीबन किशनगंज में पानी की सप्लाई प्रोजेक्ट के लिए 53 करोड़ 71 लाख रुपए और लखीसराय में पानी की सप्लाई के प्रोजेक्ट के लिए 150 करोड़ 96 लाख से ज्यादा रुपए मंजूर किए गए हैं। काबीना ने रियासत के सभी जिलों में पक्का वर्मी कंपोस्ट, गोबर बायोगैस और तिजारती वर्मी कंपोस्ट इकाइयां कायम करने का भी फैसला किया है।
1: राज्य स्कीम के अधीन राज्य के सभी 38 जिलों में पक्का वर्मी कंपोस्ट इकाई, गोबर एवं बायो

0: आज शदीद बारिश से मुतालिक ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जबकि देकर 18 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। भद्रक, कालाहांडी और नवरंगपुर में एहतियाती कदम के तौर पर तालीमी इदारों को बंद रखा गया है। भुवनेश्वर से प्रकाश दास की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं अब्दुल मालिक।
1: केरलम के 3 जिलों में बहुत शदीद बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। पेश है एक रिपोर्ट।
2: शुमाली केरलम में कोझिकोड, वायनाड और कन्नूर जिलों के लिए आज ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जिसके तहत इन तीनों जिलों के दूरदराज इलाकों में बहुत शदीद बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है। वायनाड जिले में आज तालीमी इदारों में छुट्टी का ऐलान किया गया है, जबकि 8 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है, जहां बहुत शदीद बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है। कल आधी रात से तकरीबन सभी जिलों में 5 मिलीमीटर से लेकर 15 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। तवक्को है कि जुमे और हफ्ते को केरलम में बारिश की शिद्दत में इजाफा हो सकता है। स्मिथी की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं नरगिस सलीम।
1: इस दौरान भारतीय महकमे मौसमियात ने आज वस्ती महाराष्ट्र और मगरबी मध्य प्रदेश में कुछ मकामात पर शदीद से इंतहाई शदीद बारिश की पेशगोई की है। शुमाल मशरकी भारत, मशरकी मध्य प्रदेश, मशरकी राजस्थान, गुजरात खित्ता, हिमाचल प्रदेश, केरला और माहे, कोंकण और गोवा, साहिली कर्नाटक, मराठवाड़ा, पंजाब, जैली हिमालयी मगरबी बंगाल, तेलंगाना, उत्तराखंड और विदर्भ के कई हिस्सों में शदीद से बहुत शदीद बारिश का इम्कान है। कांवड़ यात्रा आज हरिद्वार,

0: की कैद और 50 लाख रुपए जुर्माने का इल्तजाम। रियासत में फास्ट ट्रैक अदालतें बनाई जाएंगी। इसी अखबार ने नीट पेपर लीक की पूरी साजिश बेनकाब करने के सीबीआई के दावे की खबर को भी नुमाया तौर पर शाया किया है। रोजनामा इनकलाब ने वंदे मातरम की तौहीन को अब काबिले सजा जुर्म करार दिए जाने को अपनी पहली खबर बनाया है, जिसके तहत 3 साल तक की सजा का इल्तजाम है।
1: और आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। लोकसभा ने पेपर लीक की रोकथाम से मुतालिक तरमीमी बिल को मंजूरी दे दी है, जिसमें 10 साल तक की सख्त सजा की गुंजाइश मौजूद है। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश में 3 असेंबली हलकों में जिमनी चुनाव के लिए पोलिंग शुरू हो गई है। बिहार सरकार ने दरभंगा में रैयाम और मधुबनी में साकरी में चीनी की बंद मिलों को दोबारा खोलने का फैसला किया है। बुहरा अहमर के बहरान और आलमी सतह पर उथल पुथल के बावजूद भारत की तिजारती बरामदात में 15% का इजाफा हुआ है। श्रवण महीने के लिए सालाना कांवड़ यात्रा आज शुरू हो रही है। और दौलत मुश्तरक खेलों में मर्दों की 100 मीटर दौड़ में पैरा एथलीट दिलीप गावित ने सोने का तमगा जीता है, जबकि मोहम्मद बासिल ने चांदी का तमगा अपने नाम किया है। इसके साथ ही

अभी आप सुन रहे थे संतूर पर बजाया राग तोड़ी। कलाकार थे मनोज कुमार शर्मा। तबले पर आपके साथ संगत कर रहे थे रंजीत।

0: रह रहे हैं। हम जो है हर तरफ से सूचनाओं से घिरे हुए हैं। आज का जो युवा है उसके पास इतनी सूचनाएं अवेलेबल है, हम सबके पास इतनी सूचना अवेलेबल है, मेन स्ट्रीम मीडिया आपके माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, न्यूज़पेपर के माध्यम से, आसपास के सिस्टम से। अब आपके पास जो प्रबंधन करना पड़ रहा है वो अबंडेंस का मैनेजमेंट करना पड़ रहा है।
1: जी
0: तो वित्तीय का जो आपने प्रश्न पूछा उसमें हम जनरली स्केयरसिटी मैनेजमेंट करते हैं कि जहां रिसोर्सेस की कमी है उनको हम मैनेज करने की बात करते
1: तो
0: हैं।
1: एक अच्छे प्रबंधक को, एक अच्छे मैनेजर को उसमें

एग्रीगेटर्स का आइडिया आया या जहां आया, तो हमने वहां के कॉन्टेक्स्ट में जो आइडिया डेवलप हुआ उसी को हमने यहाँ पर भी कॉपी करने की कोशिश करी। पर आपने ये बताया कि गांवों की समस्याएं अलग हैं, एक किसान की समस्या अलग है, गांव के युवा की समस्याएं अलग है, तो उनके लिए गवर्नमेंट के बहुत सारे इनिशिएटिव है। पर अब समस्या मेन क्या है कि उनकी अवेयरनेस, जिस इंटेंट के साथ ये कैंपेन चलाया जा रहे हैं, अगर इसकी अवेयरनेस को अगर ठीक किया जाए तो संसाधनों की कोई कमी नहीं है। अगर किसी के पास अच्छा आइडिया है तो आज का तो सोशल मीडिया का जमाना है, वो अपना

0: हैं कि मैं समय के बदलाव के साथ एआई के साथ लिटरेट नहीं होना चाहता हूं, मैं एआई के कंधे के साथ कंधा मिला के लिए तैयार नहीं हूं, तो मुझे लगता है कि आपको समस्या आएगी। पर जो अब डिफरेंशिएटर यह बन जाएगा कि मैं एआई को अच्छा यूज कर पाता हूं, कोई और एआई को अच्छा यूज नहीं कर पाएगा, तो मैं सर्वाइव करूंगा, उसको दिक्कत आएगी। पर ऐसा नहीं है, नए तरह के जॉब आएंगे, एआई में अपने आप में जॉब आएंगे। पर इसमें मैं एक बात जरूर आपसे यह कहूंगा, हमें एआई में भी यह समझने की जरूरत है, भारत जैसे देश में हमें सिर्फ एआई का कंज्यूमर मार्केट नहीं बनना है, एआई का यूजर मार्केट नहीं बनना है, एआई के डेवलपमेंट साइड में जाने की जरूरत है। पॉइंट है कि हमें देखना है कि अब हम एआई की बात कर रहे हैं तो हम एआई के यूजर हैं या एआई के सर्विस प्रोवाइडर हैं।
1: तो कंप्लीटली हमें एआई पे डिपेंडेंट हो जाना चाहिए?
0: मुझे नहीं लगता है कि हमें एआई पे डिपेंडेंट होना चाहिए या हम एआई पे डिपेंडेंट कभी हो पाएंगे। एक बैलेंस है, एक रिस्पॉन्सिबल यूज ऑफ एआई रहेगा और वो उसका इथिकल यूज करना पड़ेगा, जिसलिए लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क आज नहीं तो कल आएंगे, जिसमें एक डिमार्केशन लाइन बनेगी कि कब एआई को रिस्पॉन्सिबल यूज किया जाए और कब ये डेंजरस हो सके।
1: और आज जो है सोशल मीडिया किस प्रकार से प्रबंधन को, मैनेजमेंट को प्रभावित कर रहा है?
0: सोशल मीडिया ने जो बिजनेस की रीच है, बिजनेस का कवरेज है, आइडिया की वायरलिटी है।

تصادف کردم من با یارو که کشتی منو با چشم ابرو، تصادف کردم من.

आ गई और नात का मक्ता पेश खिदमत है। क्या बयां हो फराज उनके औसाफ का,

0: विपक्षी सदस्यों ने विद्यार्थियों के प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई के विरोध में नारेबाजी शुरू कर दी। विपक्षी सांसद इस मुद्दे पर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से सदन में बयान देने की मांग कर रहे थे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि प्रश्नकाल सदस्यों का अधिकार है। उन्होंने कहा कि सदन की कार्यवाही में व्यवधान डालना संसदीय परंपराओं के अनुरूप नहीं है।
1: आप सबसे आग्रह किया है कि सदन में प्रश्नकाल के अंदर सदन को बाधित नहीं करें। प्रश्नकाल महत्वपूर्ण समय होता है, सदस्यों को सवाल उठाते हैं, सरकार की जवाबदेही होती है। आप प्रश्नकाल नहीं चलाना चाहते, सदन की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।
0: लोकसभा ने लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया।

अपराधियों की संपत्ति भी जब्त कर ली जाएगी। मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए प्रत्येक राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश को दैनिक सुनवाई के लिए विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने का आदेश दिया गया है। गृहमंत्री अमित शाह ने विधेयक पारित होने पर देश के प्रत्येक विद्यार्थी को बधाई दी है। श्री शाह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये विधेयक लोक परीक्षाओं की शुचिता भंग करने वालों को कड़ी सजा देने वाले पुख्ता प्रावधानों के माध्यम से देश के युवाओं के सपनों और

0: विचार और पारित करने के लिए चर्चा करेगी। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह आज दोपहर इस विधेयक को सदन में प्रस्तुत करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में आईएएसवी त्रिवेणी पर समुद्री अभियान में गई महिलाओं की टीम से बातचीत की और उनकी असाधारण उपलब्धि तथा दृढ़ संकल्प की सराहना की। इस अवसर पर श्री सिंह ने कहा कि उनका सफल अभियान राष्ट्र के लिए बहुत गर्व का विषय है।
1: आपने इस अभियान से मैं कह सकता हूं कि केवल आपने समुद्र को ही नहीं जीता है, आपने उस सारी रूढ़ियों को भी पराजित किया है जो कभी कहती थी हमारी बेटियां ऐसे कठिन सैन्य अभियानों का हिस्सा नहीं बन सकती। आपने सिद्ध किया है फिजिकल कैपेबिलिटी, मेंटल टफनेस और लीडरशिप क्वालिटी किसी जेंडर की मोहताज नहीं होती।
0: बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश में तीन निर्वाचन क्षेत्रों में विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान जारी है। बिहार में बांकीपुर, गुजरात में मंजलपुर और मध्य प्रदेश में दतिया निर्वाचन क्षेत्रों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। दिन में 11 बजे तक पटना के बांकीपुर विधानसभा सीट पर 11.5%, गुजरात की मंजलपुर सीट पर 14.27% और मध्य प्रदेश की दतिया सीट पर 32.53% मतदान की खबर है। रूस के मिसाइल और ड्रोन हमले में 2 बच्चों सहित 8 लोगों की मौत हो गई। यूक्रेन की सेना के अनुसार कीव और यूक्रेन के अन्य शहरों सहित देश के विभिन्न हिस्सों में कई हमले किए गए। कीव के मेयर विताली क्लट्सको ने लोगों से सुरक्षित स्थानों पर शरण लेने की अपील की। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने एक दिन पहले ही चेतावनी दी थी कि रूस यूक्रेन पर बड़े पैमाने पर हमला कर सकता है। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कल व्हाइट हाउस में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की थी। राष्ट्रमंडल खेलों में पैरा एथलेटिक्स के पुरुषों की 100 मीटर T47 स्पर्धा के फाइनल में भारत के दिलीप महादु गावित ने स्वर्ण और मोहम्मद बासिल मोरसिंगा नाकाथ ने रजत पदक जीतकर इतिहास रच दिया। पुरुषों की लंबी कूद स्पर्धा में मुरली श्रीशंकर ने रजत पदक जीता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने

0: अमरीका से होगा। भारत के वरिष्ठ बल्लेबाज अजिंक्य रहाणे ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। रहाणे ने भारत के लिए अपना आखिरी मैच वर्ष 2023 में वेस्टइंडीज दौरे के दौरान टेस्ट टीम में खेला था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. The Rajya Sabha is to take up the Public Examinations Prevention of Unfair Means Amendment Bill 2026 for consideration and

लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज़ में अभी आपने ये गीत सुना, फिल्म थीम मिलन। और श्रोताओं, सावन का महीना आज से शुरू हो गया है। बारिश, ठंडी हवाओं का मौसम तो ये होता ही है, साथ ही सावन का महीना जुड़ा है भक्ति, साधना और समर्पण से भी।

भैरवी। इस फिल्म से अभी आपने गीत सुना, आवाज थी कविता कृष्णा मूर्ति और रूप कुमार राठौर की। श्रोताओं, अब बात होगी दिन विशेष की। हर वर्ष 30 जुलाई को विश्व मानव तस्करी विरोध दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य मानव तस्करी जैसे गंभीर अपराध

परिवार का ध्यान भी रख पाएंगी और ये उनके लिए तो जरूरी है ही है, परिवार के लिए भी बहुत आवश्यक है। तो आज हम बात करेंगे उन पोषक तत्वों की जिनकी पर्याप्त मात्रा महिलाओं के अच्छे स्वास्थ्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले बात करते हैं आयरन यानी लोह तत्व की। अक्सर महिलाओं में आयरन की कमी हो जाती है जिससे थकान, कमजोरी और एनीमिया जैसी समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए आयरन से भरपूर भोजन जरूर लें और आवश्यकता पड़ने पर चिकित्सक की सलाह से ही आयरन सप्लीमेंट लें, क्योंकि ये कहीं ना कहीं इसका थोड़ा सा साइड इफेक्ट होता है, तो अपने आप तो बिल्कुल ना ही लें। दूसरा है कैल्शियम और विटामिन डी। ये दोनों मिलकर हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाते हैं और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है इनकी ज़रूरत और भी बढ़ जाती है। विटामिन B12 भी महिलाओं के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसकी कमी से कमजोरी, हाथ पैरों में झनझनाहट और कभी कभी याददाश्त पर भी असर पड़ने लगता है। तो विटामिन B12 का जो आप सप्लीमेंट है या जो भी आपकी डाइट में जैसे मिल सकता है तो उसे अपनी खुराक में ज़रूर शामिल करें। और इसके अलावा ओमेगा 3 फैटी एसिड और मैग्नीशियम भी हृदय, मस्तिष्क, मांसपेशियों और अच्छी नींद के लिए सहायक हो सकते हैं। लेकिन एक बात हमेशा याद रखने की ज़रूरत है, वो ये कि सप्लीमेंट जो हैं वो भोजन का विकल्प नहीं है। संतुलित आहार, हरी पत्तेदार सब्जियां, दालें, दूध और दूध के जो प्रोडक्ट हैं, जो दुग्ध उत्पाद हैं, उन्हें ज़रूर शामिल करें। साथ ही साथ फल, मेवे, नियमित व्यायाम, पर्याप्त धूप और अच्छी नींद स्वस्थ जीवन की असली नींव है। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि किसी भी सप्लीमेंट का सेवन स्वयं से शुरू ना करें। हम बार बार यही कहेंगे कि चिकित्सक से परामर्श लें और तभी इनकी की जो है शुरू करें, और सलाह तो लें ही, साथ ही साथ अगर चिकित्सक ये कहता है कि आपको कुछ जांच करवाने की ज़रूरत है तो जांच भी करवा लें।

दान है ये। ये सम्मान उन बच्चों को दिया जाता है जिन्होंने कम उम्र में किसी क्षेत्र में खास उपलब्धि हासिल की हो। बहादुरी, खेल, विज्ञान, पर्यावरण, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, सामाजिक सेवा, कला और संस्कृति, ये वो क्षेत्र हैं जिसमें बच्चा अगर कुछ खास करता है तो उसके कार्य को, उसकी उपलब्धि को एक नई पहचान दी जाती है। आपको ये भी बता दें कि जो ये पुरस्कार है वो 5 से 18 वर्ष तक

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। राज्यसभा में आज लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पर विचार और पारित करने के लिए चर्चा होगी। कार्मिक लोक शिकायत

0: सदन की कार्यवाही को बाधित करने पर है।
1: इस संसद के माध्यम से देश को इस बात का संदेश देना चाहता हूं कि मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार हर विषय पर चर्चा करने के लिए तैयार है। विपक्ष जो है वो गैर जिम्मेदाराना व्यवहार कर रही है, यह ध्यान में रहे।
0: लोकसभा की कार्यवाही नीट परीक्षा मुद्दे को लेकर विद्यार्थियों के प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई पर विपक्ष के हंगामे के कारण दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। आज

0: दिन में 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होने पर विपक्षी सदस्यों ने विद्यार्थियों के प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई के विरोध में नारेबाजी शुरू कर दी। विपक्षी सांसद इस मुद्दे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से सदन में बयान देने की मांग कर रहे थे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि प्रश्नकाल सदस्यों का अधिकार है। उन्होंने कहा कि सदन की कार्यवाही में व्यवधान डालना संसदीय परंपराओं के अनुरूप नहीं है।
1: आप सबसे आग्रह किया है कि सदन में प्रश्नकाल के अंदर सदन को बाधित नहीं करें। प्रश्नकाल महत्वपूर्ण समय होता है, सदस्यों को सवाल उठाते हैं, सरकार की जवाबदेह होती है। आप प्रश्नकाल नहीं चलाना चाहते, सदन की कार्यवाही आज 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को नीट पेपर लीक मामले को लेकर जंतर मंतर पर विद्यार्थियों के प्रदर्शन के दौरान तैनात रैपिड एक्शन फोर्स के गोला बारूद के उपयोग का रिकॉर्ड सुरक्षित रखने का निर्देश दिया है। सर्वोच्च न्यायालय ने कानून व्यवस्था की स्थिति से निपटने के लिए पैलेट गन के इस्तेमाल पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि

पीठ ने दिल्ली सरकार को प्रदर्शन के दौरान पैलेटगंज से घायल हुए लोगों को बेहतर से बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने का भी निर्देश दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में आईएएसवी त्रिवेणी पर समुद्री अभियान में गई महिलाओं की टीम से बातचीत की और उनकी असाधारण उपलब्धि तथा दृढ़ संकल्प की सराहना की। इस अवसर पर श्री सिंह ने कहा कि उनका सफल अभियान राष्ट्र के लिए बहुत गर्व का विषय है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने पंजाब के बरनाला में अनुसूचित जाति समुदाय से जुड़े सफाई कर्मचारियों के साथ कथित पुलिस ज्यादती के मामले में पंजाब के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को नोटिस जारी किया है। आयोग ने दोनों अधिकारियों से इस मामले में 7 दिन के भीतर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है।

की खबरें सामने आई हैं। भारत विश्व स्क्वाश जूनियर टीम चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंच गया है। सेमीफाइनल में भारत का सामना अमेरिका से होगा। उधर भारतीय महिला टीम क्वार्टर फाइनल में अमेरिका से 1-2 से हार गई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

अपने पति सुधीर यानी कि अश्मित पटेल के साथ एक आलीशान जिंदगी जी रही है। बाहर से सब परफेक्ट लगता है लेकिन अंदर अंदर सिमरन बहुत अकेली है। सुधीर अपने काम की दुनिया में इतना व्यस्त है कि सिमरन के पास ना तो उसके लिए वक्त है और ना ही प्यार। जब दिल के अंदर ना प्यार हो और दिल अंदर से खाली हो तो गुमराह होना आसान हो जाता है। एक दिन बारिश के बीच सिमरन की मुलाकात होती है अपने कॉलेज के एक्स बॉयफ्रेंड सनी से। सनी बेपरवाह, जुनूनी और सिमरन की तन्हाई को उभांप लेता है। सनी की आंखें और उसकी बातें सिमरन को उस अतीत में खींच ले जाती हैं जहां सिर्फ और सिर्फ जुनून था। बारिश की बूंदों के बीच जब ये दोनों करीब आते हैं तो बॉलीवुड को मिलता है एक सबसे रोमांटिक और प्यारा गाना जिसे गाया था कुणाल गांजावाला ने। तो आइए इस गाने को सुनते हैं जिसने कुणाल को स्टार बना दिया था।

वहीं दूसरी तरफ सिमरन को लगता है कि सनी उसे छोड़कर चला गया है। लेकिन जब पुलिस इन सब बातों की जांच शुरू करती है तो सुधीर और सिमरन दोनों का दिल दहल उठता है। पर रुकिए, क्या सनी सच में मर चुका था? क्लाइमेक्स में आता है कि एक धमाकेदार ट्विस्ट। जब सुधीर और सिमरन लाश की जगह पर पहुंचते हैं और गड्ढा खोलकर देखते हैं तो वो हैरान हो जाते हैं। वो गड्ढा खाली होता है, सनी जिंदा होता है और वो बदला लेने के लिए लौट आता है। अंत में सुधीर अपनी पत्नी सिमरन को बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा देता है और इस तरह सिमरन को अपने पति के सच्चे प्यार का एहसास होता है। इस पूरे थ्रिल और इमोशन को जो गाना सबसे ज्यादा खूबसूरती से जोड़ता है, आइए उस गाने को सुनते हैं।

श्रोताओं, भी आपने खूबसूरत गीत सुना और आज हम बात कर रहे हैं फिल्म मर्डर की। महेश भट्ट और अनुराग बसु ने मिलकर 2004 में जो थ्रिलर फिल्म बनाई उसने इमरान हाशमी को बॉलीवुड का उभरता सितारा बना दिया। वहीं मलका शेरावत उस दौर की सबसे बोल्ड एक्ट्रेस बनकर उभरी और इस फिल्म के संगीतकार ने कई सारी बुलंदियां छुई। आज भी जब बारिश होती है या रात के सन्नाटे में कोई थ्रिलर देखने का मन होता है तो इस फिल्म की याद हमें आती है। उम्मीद है आज का ये फिल्मी सफर और इस फिल्म के गाने आपको बेहद पसंद आए होंगे। सुधीर, सिमरन और सनी की ये कहानी, ये आइकॉनिक गाने जिसे अभी आपने सुना, तो चलते चलते आपको सुनवाते हैं इसी फिल्म का एक और गीत और अपने दोस्त को अब अनुमति दीजिए। नमस्कार।

0: विद्यार्थियों के विरोध मुजहरे दौरान कथित पुलिस कार्रवाई विरुद्ध नारेबाजी शुरू कर दी। वह इस मुद्दे से केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह तो बयान की मांग कर रहे सन। स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि प्रश्नकाल एक मैंबर का अधिकार है और सभा की सब तो महत्वपूर्ण कार्रवाई है। उन्होंने आगे कहा कि सभा की कार्रवाई में विघन पाना संसदीय रवायतों के अनुसार नहीं है।
1: आप सबसे आग्रह किया है कि सदन में प्रश्नकाल के अंदर सदन को बाधित नहीं करें। प्रश्नकाल महत्वपूर्ण समय होता है, सदस्यों को सवाल उठाते हैं, सरकार की जवाबदेही होती है। आप प्रश्नकाल नहीं चलाना चाहते, सदन की कार्रवाई 8-2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।
0: सुप्रीम कोर्ट ने आज केंद्र नीट पेपर लीक मामले ते विद्यार्थियों के विरोध मुजहरे दौरान जंतर मंतर

0: रिपोर्ट पेश करन विच असफल रहन ते संबंधित अधिकारियां नू निजी तौर ते इसदे सामने पेश होने लई समन भेजा जा सकदा है। ए नोटिस हरदीप सिंह गिल वलों दायर कीती गई शिकायत ते जारी कीते गए ने। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नवी दिल्ली विच IAVS त्रिवेणी दी सारियां औरतां दी सेलिंग एक्सपीडिशन टीम नाल गल्लबात कीती अते उन्हां दी असाधारण प्राप्ति ते दृढ़ इरादे दी शलाघा कीती। रक्षा मंत्री ने कहा कि टीम ने ना सिर्फ इस मुहिम राही समुंदर नूं जित्तिया सगों लंबे समय तो चलियां आ रहियां रूढ़ीवादी धारनावां नूं भी तोड़ दित्ता जो औरतां दी पेचीदा फौजी कार्रवाईयां करन दी योग्यता ते सवाल उठाते सन।
1: अपने इस अभियान से मैं कह सकता हूं कि केवल आपने समुद्र को ही नहीं जीता है, आपने उस सारी रूढ़ियों को भी पराजित किया है जो कभी कहती थी हमारी बेटियां ऐसे कठिन सैन्य अभियानों का हिस्सा नहीं बन सकती। आपने सिद्ध किया है फिजिकल कैपेबिलिटी, मेंटल टफनेस और लीडरशिप क्वालिटी किसी जेंडर की मोहताज नहीं होती।
0: सीनियर भारतीय बल्लेबाज अजिंक्य रहाणे ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट तो संन्यास लैण दा ऐलान कर दिता है। 38 साल रहाणे ने 2013 विच शुरू होए अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर विच भारत लई कुल 85 टेस्ट 90 एक दिना अते 20-20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेडे ने। भारत विश्व स्क्वैश यूनियर टीम चैंपियनशिप दे सैमीफाइनल विच पहुंच गया है। भारत दी मर्दा दी टीम ने कैनेडा दे ओंटारियो विच इंग्लैंड नूं 2-1 नाल हराया। सैमीफाइनल विच भारत दा सामना अमरीका नाल होएगा। आखिर च खास खबरां। राज्यसभा जनतक प्रीख्यावां अनुचित साधना दी रोकथाम सोध बिल 2026 नूं विचार ते पास करन लई लेगी। बिहार, गुजरात ते मध्य प्रदेश दे 3 विधानसभा हल्कियां विच

31.53% वोटिंग दर्ज की गई है। पोलिंग शाम 6 बजे तक जारी रहेगी। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में IASV त्रिवेणी की सिर्फ खवातीन पर मुश्तमिल सेलिंग टीम से बातचीत की और उनकी गैरमामूली कामयाबी और पुख्ता आजम की सताइश की। इस मौके पर खिताब करते हुए जनाब सिंह ने कहा कि सेलिंग उनकी कामयाब मुहिम मुल्क के लिए इंतहाई बाइस फख्र है। शरवन महीने की सालाना कांवड़ यात्रा आज से शुरू हो गई है। इस कांवड़ यात्रा के दौरान बड़ी तादाद में अकीदतमंद गंगा जल लेने के लिए हरिद्वार, गौमुख और गंगोत्री जाते हैं। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश हुकूमतों ने बड़ी तादाद में अकीदतमंदों के लिए वसी तर इंतजाम किए हैं। मरकजी वजीर दाखिला और वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने आज श्रावण के पवित्र महीने के आगाज पर लोगों को मुबारकबाद दी है। भारत के महकमे मौसमियात ने मध्य महाराष्ट्र, तेलंगाना, विदर्भ

0: करने का प्रावधान है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: इससे पहले शून्यकाल के दौरान कांग्रेस के प्रमोद तिवारी ने नीट परीक्षा पेपर लीक के विरोध में प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर कथित पुलिस कार्रवाई का मुद्दा उठाया। उन्होंने गृहमंत्री अमित शाह से इस पर बयान देने की मांग की। इसके जवाब में केंद्रीय मंत्री और सदन के नेता जेपी नड्डा ने कहा कि विपक्ष का पूरा ध्यान सदन की कार्यवाही को बाधित करने पर है।
2: इस संसद के माध्यम से देश को इस बात का संदेश देना चाहता हूं कि मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार हर विषय पर चर्चा करने के लिए तैयार है। विपक्ष जो है वो गैर जिम्मेदाराना व्यवहार कर रही है, यह ध्यान में रहे।
1: लोकसभा की कार्यवाही नीट परीक्षा मुद्दे को लेकर विद्यार्थियों के प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई पर विपक्ष के हंगामे

में भी जानकारी देने को कहा है। भारतीय जनता पार्टी ने पंजाब में कथित पेपर लीक को लेकर आज नई दिल्ली में आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन की अगुवाई दिल्ली भाजपा अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा ने की। संवाददाताओं से बातचीत में श्री मल्होत्रा ने आरोप लगाया कि पंजाब में फार्मास्यूटिकल्स परीक्षा का पेपर लीक हो गया था। उन्होंने मांग की है कि परीक्षा दोबारा कराई जाए। साथ ही पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस के इस्तीफे की भी मांग की गई है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश में तीन निर्वाचन क्षेत्रों में विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान जारी है। बिहार में बांकीपुर, गुजरात में मंजलपुर और मध्य प्रदेश

0: चीन के निचले इलाकों में रहने वालों लोगों में चिंता बढ़ गई है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: मौसम विभाग ने मध्य महाराष्ट्र, तेलंगाना, विदर्भ और पश्चिमी मध्य प्रदेश में आज अत्यधिक तेज वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: मौसम विभाग ने अगले दो दिनों के दौरान अरुणाचल प्रदेश, केरल, माहे और राजस्थान में गरज चमक और बिजली गिरने के साथ तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। तटीय और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, कोंकण और गोवा में भी कल तक ऐसे ही हालात बने रहने की संभावना है। पूर्वोत्तर भारत में विभाग ने अगले

ऑन्टेरियो में भारतीय पुरुष टीम ने इंग्लैंड को 2-1 से हराया। सेमीफाइनल में भारत का सामना अमेरिका से होगा। राष्ट्रमंडल खेलों में पैरा एथलेटिक्स के पुरुषों की 100 मीटर T47 स्पर्धा में के फाइनल में भारत के दिलीप महादू गावित ने स्वर्ण और मोहम्मद बासिल बोरसिंगा नाकाथ ने रजत पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। पुरुषों की लंबी कूद स्पर्धा में मुरली श्रीशंकर ने रजत पदक जीता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने पदक जीतने पर खिलाड़ियों को बधाई दी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्यसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा। विधेयक का उद्देश्य पेपर लीक के दोषियों के लिए कानून को और सख्त बनाना। लोकसभा की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित। सर्वोच्च न्यायालय का केंद्र सरकार को दिल्ली में छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान रैपिड एक्शन

ये तो क्या बात करें, उनकी आवाज की इतनी मधुर गायिका थी कि वो सबके दिलों में अमर कर जाती है। तो हम बात कर रहे हैं, अरे बात तो हम कर रहे हैं लेकिन किसकी, वो आपको बताना है। जी हाँ, रहना है तो कुछ तो आपको कहना है। तो हम आपके लिए एक छोटी सी बात बताना चाहेंगे कि आज उनका जन्मदिन है, 30 जुलाई उनका जन्मदिन होता है। और सबसे पहली बार, यानी कि हमें विश तो करना पड़ेगा ना, और हमारे खास इतने सुर के जो महान गायक हैं उनकी आवाज़ दिलों पर छा जाती है। तो आज उनका जन्मदिन है, तो आकाशवाणी की तरफ से और हमारे सभी

जी हाँ, आज हम किसकी बात कर रहे हैं, वो कौन है? हमारे एक श्रोता ने हमें मैसेज करके जवाब दे भी दिया। हमारे सभी श्रोता बहुत ही समझदार हैं। और सबसे पहले जिसने हमें जवाब भेजा है वो है हमारे गांव वाराणसी जिला हिसार से राजकुमार हुडी, प्रमोद कुमार हुडी। बहुत बहुत मुबारक हो आपको आज के हमारे फेवरेट श्रोता का खिताब पाने के लिए। और इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहिए इस एक एक जो एक है ना, एक खेल है छोटा सा जो बहुत अच्छा है ना, ये जोड़ता है हमें एक दूसरे के साथ। और आपके जवाब जब हमारे पास आते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। जी हाँ, आज हम जिसकी बात कर रहे हैं, जिनका आज जन्मदिन है, वो है आज के हमारे सितारे सोनू निगम जी। 30 जुलाई 1973 को हरियाणा के फरीदाबाद में जन्मे सोनू निगम के पिता अगम कुमार निगम स्वयं एक गायक थे। घर में संगीत का माहौल था, इसलिए सुरों से उनका रिश्ता बचपन से ही जुड़ गया। कहते हैं कि कलाकार पैदा नहीं होता,

हसन जी का मैसेज आया हमें, आर कुमार जी का पंजाब से, वर्डिंग खेड़ा मिंटू, पिंकी लवली आरती, और दिग्दर्शन गौर जी का भी हमारे पास, कविता गौर जी का मेरठ से मैसेज आया है। और फिर हमारे पास फगुराम यादव जिनका, उन्होंने भी सही जवाब, सभी ने सभी सही जवाब दिया, संबलपुर कांकेर, फगुराम ज्योति ओजस्वी।

हाँ जी, बड़े श्रीमती नंदा बोर्ड के, हनुमान बोर्ड के उत्तम जमदाड़े, और हिंगोली महाराष्ट्र से इन्होंने हमें मैसेज किया है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़े रहने के लिए, और सुनते हैं इनका अगला नगमा, यही वाला, ये दिल दीवाना।

0: 8 अगस्त 2026 तक BLO द्वारा दिए गए इन्यूमरेशन फॉर्म को भर के जमा कराएं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।
1: आदाब, सत श्री अकाल, आपकी दोस्त और होस्ट रहना तवर का स्वीकार कीजिए प्यार भरा नमस्कार। मैं फिर आ गई आपके साथ आपके ही अगले कार्यक्रम मैटिनी मेलोडी में। जी हाँ श्रोताओं, अब हम लेकर चलेंगे 1950 और 60 के दशक के उस गोल्डन एरा में जहाँ प्यार की बातें शोर नहीं करती थी बल्कि सुरों में बहती थी, गीतों में मासूमियत, शब्दों में कविता हुआ करती थी। और धुनों की बात करें तो धुनें जो होती ना दिल की धड़कनों में बसती थी। प्यार का इजहार आंखों में आंखों से ही हो जाता था, कोई कुछ कहता नहीं था, बस आंखों से बयां हो जाता था। और वो शब्द ऐसे थे कि आप कहते थे और दूसरा समझ जाता था। तो इस आधे घंटे में उस फिल्मी गलियारों को हम महसूस करेंगे जो सदाबहार गीतों का दशक कहलाता है। आज हमारे साथ

तो ये कार्यक्रम हम आपके लिए लेकर आए हैं मैटिनी मेलोडी। मैं हूँ राणा दवर और इस कार्यक्रम को हम शुरू करते हैं इस खूबसूरत नगमे के साथ। और हमें मैसेज करना ना भूलें कि जिंदगी कितनी खूबसूरत है और कौन सी ऐसी चीज़ है जो आप चाहते हैं करना लेकिन आप कर नहीं पाए। कोई बात नहीं, समय बहुत है, फिर कर लेंगे। तो चलिए जवाब दीजिए जल्दी से कि क्या करना चाहते हैं, आपकी कौन सी तमन्ना है जो पूरा करना चाहते हैं और वो तमन्ना क्या है, हम भी तो जाने।

0: किसी के
1: क्या करना है देखे,
0: अरे हो रहना किसी के
1: अंदर है तो याद करोगे समझे
0: समझे।

जी हाँ, कभी किसी का दिल नहीं जलाओ भाई। कोई दिल की बात आपसे कह रहा है तो मान जाइए। अच्छा जी, मैं हारी, चलो मान जाओ ना। फिल्म काला पानी, इसके गायकार हैं मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले जी, और संगीतकार एस डी बर्मन साहब। गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी का था, और इसमें जो कलाकार थे वो थे देवानंद और मधुबाला। बेहद प्यारा और नटखट है ना, रूठना मनाना, एक युगल गीत। इन दोनों की केमिस्ट्री बहुत ही गजब की रही। ये उन

सामीन, अभी आप मीरा बासु की आवाज में गजल सुन रहे थे। कलाम था मिर्जा गालिब का। सामीन, खुद एतमादी कामयाब और बावकार जिंदगी की बुनियाद है। हमें चाहिए कि हम खुद एतमादी को अपनी शख्सियत का हिस्सा बनाएं, अपनी सलाहियतों को निखारें, मेहनत और मुशक्कत को अपना शार बनाएं और हर मुश्किल का साबित कदमी से मुकाबला करें। अपना किरदार ऐसा बनाएं कि माशरे में इज्जत और कामयाबी हासिल कर सकें। जो नगमे तेरी याद में हमने गाए, जो नगमे तेरी याद में हमने गाए, किरण बन के फूटे

अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम उर्दू मजलिस। हम आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 366.3 मीटर यानी 819 किलो हर्ट्ज पर। शाम के 4 बजने वाले हैं, थोड़ी ही देर में समाचार प्रसारित किए जाएंगे।

पेरिस 2024 पैरालंपिक में पुरुषों की 400 मीटर T47 स्पर्धा के फाइनल में पहुंचकर देश को गर्वित किया। आज दिलीप गावित अनगिनत युवा एथलीटों के लिए प्रेरणा है। उन्होंने ये साबित कर दिया है कि दृढ़ निश्चय और साहस सबसे बड़ी चुनौतियों पर भी विजय पा सकते हैं। बात करें एथलेटिक्स की तो भारत के स्टार लंबी कूद खिलाड़ी मुरली श्रीशंकर ने एक बार फिर अपनी विश्व स्तरीय क्षमता का प्रदर्शन किया। श्रीशंकर ने 8.09 मीटर की सर्वश्रेष्ठ छलांग लगाकर रजत पदक जीता। मुकाबला बेहद रोमांचक रहा। शुरुआती तीन प्रयासों तक श्रीशंकर शीर्ष पर थे, लेकिन बाद में जमैका के ताजे

भाला फेंककर चौथे स्थान पर रहे अगर इस हीट में बात करें। इसके अलावा रोहित यादव 9वें स्थान पर रहे, जिन्होंने 78.37 मीटर भाला फेंका, और 10वें स्थान पर यशवीर सिंह रहे, जिन्होंने 78.36 मीटर का भाला फेंका। और बात करें पुरुषों की ट्रिपल जंप क्वालिफाइंग स्पर्धा की, तो उसमें सेल्वा प्रभु टी और प्रवीण चित्रावेल के साथ अब्दुल्ला अबूरकर भारत की चुनौती पेश कर रहे हैं। फिलहाल अगर ताजा अपडेट्स की बात करें तो प्रवीण चित्रावल की दूसरी रैंक वहां पर रही है, जिनमें 16.41 कि उन्होंने जंप करी। इसके अलावा अन्य भारतीय खिलाड़ी की बात करें तो सेल्वा प्रभु भी तीसरे स्थान पर रहे, 16.26 उनका स्कोर रहा। और जी हाँ, यहां से अगर अपडेट्स की बात करें तो यही अपडेट्स है। इसके अलावा बात करें अगर साइकिलिंग की, तो मेंस टीम स्प्रिंट में भी भारतीय टीम जो है

स्कॉटलैंड चौथे स्थान पर है, जबकि नाइजीरिया, दक्षिण अफ्रीका और मलेशिया क्रमशः पांचवें, छठे और सातवें स्थान पर हैं। भारत इनके ठीक पीछे आठवें स्थान पर मौजूद है। हालांकि प्रतियोगिता अभी बाकी है और आने वाले दिनों में भारत की मजबूत दावेदारी वाले कई मुकाबले होने हैं। एथलेटिक्स, मुक्केबाजी, वेटलिफ्टिंग और अन्य स्पर्धाओं में भारतीय खिलाड़ियों से पदकों की उम्मीद बनी हुई है। यदि भारत स्वर्ण पदकों की संख्या बढ़ाने में सफल रहता है तो पदक तालिका में कई स्थानों की छलांग लगाना संभव है। ग्लासगो में इस बार प्रतियोगिता

0: से मणि रामपाल, मलखान सिंह पाल, सुधांशु पाल, हिमांशु पाल और इनका परिवार, MLB रोड ग्वालियर से सुरेश खुराना, पप्पी, किरण खुराना, लव्या, आरव, मेघा, साक्षी, आशीष, अनुज, विशु, छोटू, एस के पप्पी खुराना, पुरखोलूस आदा कबूल करें लिख रहे हैं। कौन है ये दादा? बाबू रोड गिरढ़ी, झारखंड से मोहम्मद यासीन, अनजान, साइमा नवाज, हसन नवाज और इनका परिवार, ऊपरकोट मोहल्ला चौकुंडी बुलंदशहर से मोहम्मद सईम अब्बासी, निगत परवीन अब्बासी, शाह नवाज अब्बासी, सरफराज अब्बासी, फरदीन अब्बासी और इनका परिवार, गांव फरांसी जिला हिसार से राजकुमार डुड्डी, प्रमोद कुमार डुड्डी और पुष्पेंद्र डुड्डी।
1: गांव चौधरीवास हरियाणा से ये SMS हमारे पास आया है, मांगेराम सतौड़, रितु सतौड़ और इनके परिवार का। ये हमारे पास SMS आया है जो राधेश्याम शर्मा और इंदिरा शर्मा का हमें SMS मिला है। और ये SMS हमारे पास आया है गांव उगाला जिला अम्बाला हरियाणा से, भेजने वाले भाई हैं राजेंद्र कुमार और इनके परिवार के सभी सदस्य। अनारकली बाजार जुगराव पंजाब से हमें SMS भेजा है।

समुदाय 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन ने कहा है कि सरकार ने देश में सेमीकंडक्टर विनिर्माण को मजबूत करने के लिए 1,27,500 करोड़ रुपए के बजट के साथ इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के दूसरे चरण को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि ये वर्ष भारत के सेमीकंडक्टर उद्योग के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि 3 सेमीकंडक्टर इकाइयां पहले ही वाणिज्यिक उत्पादन शुरू कर चुकी हैं। बिहार की बांकीपुर गुजरात

की। राष्ट्रपति ने कहा कि बस्तर पांडुम जैसे आयोजनों ने युवाओं को उनकी परंपराओं, रीति रिवाजों और सांस्कृतिक विरासत से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। प्रवर्तन निदेशालय ने चेन्नई, कोयम्बतूर, हैदराबाद और मुंबई में वर्ष 2022 में कोयम्बतूर बम धमाकों से जुड़े अवैध धन शोधन मामले में 16 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। फिदाइन आतंकी जमीशा मुबीन और इस्लामिक स्टेट आज राष्ट्रमंडल खेलों की भाला फेंक स्पर्धा के फाइनल में पहुंच गए। रोहित यादव और यशवीर सिंह ने भी फाइनल में जगह बनाई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: कृषि जगत कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सभी बहन भाइयों को हमारी
1: राम राम। पायल बहन, जैसे कि बारिश का मौसम चल रहा है, तो बारिश के मौसम में हम देखते हैं कि इस समय हमारी बेल वाली फसलें जो हैं उनको बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि इस समय जब बहुत तेज़ बारिश होती है तो ज़्यादा पानी का भराव अगर होता है तो बेल वाली फसलें आराम से बहुत जल्दी से ख़राब हो जाती हैं। फल लगे हुए भी ख़राब होते हैं और जब डूब जाती है तो बेल भी ख़राब होती है। हम जानते हैं कि दूसरे पौधों के मुकाबले में बेल बहुत ही नाजुक होती हैं,
0: बिल्कुल
1: इसीलिए उनका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और जो किसान भाई इस बात का ध्यान रखते हैं कि अगर ज़्यादा बारिश हो गई तो पानी की निकासी का प्रबंध करें तो उनकी फसलें बची रहती हैं। इसके अलावा सफ़ेद

की समस्या खास तौर पर बेल वाली सब्जियों में आती है, उसके नियंत्रण के लिए भी उन्हें कदम उठाने ज़रूरी हैं, चाहे उसमें छिड़काव करना है या फिर आप को ये भी ध्यान रखने की ज़रूरत है कि जो बेल वाली फसलें हैं उनके अंदर पानी की निकासी के साथ साथ पोषण की भी पूरी व्यवस्था होनी चाहिए कि पौधा आपका अच्छे से चले और जो उसके ऊपर फूल लगे हैं उनसे ज़्यादा से ज़्यादा फल आपके बन सके। और ज़्यादा बात ये भी ध्यान रखनी है एक और कि अगर बारिश नहीं होती है, कई इलाकों में इस समय बारिश नहीं हो रही है, आज भी देखो दिन में कितनी तेज़ धूप थी, तो उस स्थिति में पानी की व्यवस्था किया जाना भी बहुत ज़रूरी है। और जो बेल वाली सब्जियां हैं उनमें खास तौर पर जो टपक सिंचाई विधि है उससे ज़्यादा अच्छी पानी की बचत होती है और इनसे भरपूर पैदावार मिलती है। तो हमारे किसान भाइयों को ध्यान रखना चाहिए कि जो बेल वाली फसलें हैं

उस स्थिति में पानी की व्यवस्था किया जाना भी बहुत ज़रूरी है। और जो बेल वाली सब्जियां हैं उनमें खास तौर पर जो टपक सिंचाई विधि है उससे ज़्यादा अच्छी पानी की बचत होती है और इनसे भरपूर पैदावार मिलती है। तो हमारे किसान भाइयों को ध्यान रखना चाहिए कि जो बेल वाली फसलें हैं उनमें अगर पानी ज़्यादा आ गया है तो निकासी तुरंत करें, पानी की कमी है तो उसमें पानी दिया जाना भी ज़रूरी है। आजकल बहुत सारी तकनीकें कृषि के क्षेत्र में चल रही हैं और बहुत सारी योजनाएं भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं, और जो किसान कॉल सेंटर है स्कीम भारत सरकार की, उसके अंतर्गत हमारे किसान भाई सीधे फ़ोन करके किसान कॉल सेंटर पर कोई भी समस्या है उसका समाधान पा सकते हैं और किसी भी समय वो फ़ोन कर सकते हैं। अगर उस समय विशेषज्ञ टेलीफोन पर उपलब्ध होते हैं वो सीधा जवाब देते हैं, नहीं तो आपको एक समय बता देते हैं कि उस समय आपका समाधान इसका किया जाएगा। और इसके अलावा जो एम किसान पोर्टल है उसके माध्यम से हमारे किसान अपने फसल के उत्पाद को किसी दूसरे हिस्से में भी बेच सकते हैं और उनको पता लग जाता है कि कहाँ पर क्या रेट चल रहा है। एक प्लेटफॉर्म पर पूरे देश के किसान आ जाते हैं, और जो आजकल की तकनीकें हैं या पोर्टल सरकार ने बनाए हैं उनका फ़ायदा उठा के हमें कृषि में अधिक से अधिक लाभ लेना चाहिए।

0: जानकारी हमारे सभी किसान भाई बहनों को दी, बेल वाली सब्जियों के और एम पोर्टल के बारे में, किसान कॉल सेंटर के बारे में। तो ऐसी ही जानकारियां हम अपने किसान बहन भाइयों के हित के लिए लेकर आते रहते हैं, और आज एक ऐसी ही बातचीत हम सुनवाएंगे जिसमें कि
1: सुनवाएंगे। और हम ये भी बता दें पायल महन कि अभी हमारे कुछ कार्यक्रम भी नए शुरू हुए हैं कृषि से जुड़े हुए, तो
0: बिल्कुल
1: उनकी जानकारी भी हमारे किसानों को होनी चाहिए।

0: जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
1: सोमवार 5:30 से 6 और रविवार 5:30 से 6 और चैनल होंगे गोल्ड और हमारा FM रेनबो, तो सुन सकते हैं हमारे किसान भाई। और जो तकनीक की हम बात कर रहे हैं, तो सुनते हैं कृषि में नई तकनीक और ड्रोन का उपयोग विषय पर डॉक्टर शंकर गोयनका से बात कर रहे हैं प्रताप सिंह भाटी।
2: किसान बहनों भाइयों, कृषि के उत्पादन बढ़ाने में जो नई नई तकनीक हमारे किसान भाई अपना रहे हैं, उसकी अहम भूमिका है। जैसा कि आप देखते हैं, करते भी हैं, कटाई से लेकर बुआई तक मशीनों का प्रयोग किया जा रहा है। यहाँ तक कि अब खेत में चाहे सब्जी की तुड़ाई की बात हो, चाहे आलू निकालने की बात हो, चाहे बुआई की बात हो, सब मशीनों से किया जा रहा है। और उससे किसान को भी आसानी हो रही है और पैसा भी बच रहा है और उसका उत्पादन भी बढ़ रहा है। हमारे देश में नई तकनीक आई है ड्रोन, जिसका खेती में बहुत बड़ा योगदान है। किस तरह का योगदान है, किस तरह की समय बचत होगी, किस तरह की लागत कम होगी, आइए इन सब बातों की विस्तार से जानकारी देने के लिए आज हमारे स्टूडियो में आमंत्रित हैं डॉक्टर शंकर गोयनका जी।

चाहिए तो सबसे पहली बात तो पानी बचा, दूसरी बात है जब आप हाथ से छिड़कते हैं तो 4 से 5 घंटे लगते हैं एक एकड़ को ढंग से छिड़कने में। ड्रोन वो काम 5 से 8 मिनट में करता है, जितना बड़ा क्रॉप है उसके हिसाब से मिनिमम 5 मिनट लगते हैं और मैक्सिमम 8 मिनट लगते हैं। तो 5 घंटे का काम 5 मिनट में हुआ, तो पानी बचा, समय बचा, 30% दवाई कम लगती है सर। तो भारत में एवरेज दवाई 2000 से 25000 रुपए की है, यदि 2000 की भी हम दवाई पकड़े तो 600 रुपए पर एकड़ आपकी दवाई बचती है। तो पानी बचा, समय बचा, दवाई बची। तीसरी बात है सर, जब आदमी पैदल से छिड़कता है तो करीब 15 से 18% फसल नष्ट होती है पांव के चलने से, तो बचता है। 8 से 12% प्रोडक्शन ज्यादा आता है क्योंकि इससे पत्ते पत्ते पर छिड़काव होता है। तो ये सारी बातों का फायदा मिला। और सबसे बड़ी बात है सर कि मैंने जैसे कहा कि सांप के काटने से, जीव जंतु के काटने

0: हैदराबाद में किया। फिर भारत में जो सबसे लंबा पेड़ होता है कर्नाटक में, सुपारी का होता है,
1: जी
0: अराकनट बोलते जिसे बोलते हैं वहां पर, वहां की भाषा में, जो कि 60-65 फुट का पेड़ होता है, उसके ऊपर भी किया। ड्रोन एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जहां पर आप खड़े हैं वहां से 1.5 किलोमीटर दूर तक आप छिड़क सकते हैं, और ऊपर में करीब 65 मीटर यानी 200 फुट की हाइट तक आप ड्रोन के माध्यम से छिड़काव कर सकते हैं। भारत में लंबे से लंबा पेड़ 60 से 70 फुट का है, जिसको आप ड्रोन से बहुत अच्छे से कवर

0: उसको वो मैप करता है, स्कैन करता है और वो एआई के माध्यम से अंदर डाल लेता है, और फिर वो यदि ऊंचा है तो ऊपर जाएगा, नीचा है तो नीचे आएगा, और समान तरीके से पत्ते पत्ते पर छिड़काव करता है, और यही कृषि विमान की खास बात है।
1: और जैसा कि आप जानते हैं डॉक्टर साहब, हमारे खेत की जोत लगातार घटती जा रही है, छोटी छोटी खेत हैं लोगों पे।
0: जी सर।
1: तो ड्रोन तो एकदम जोर से चलता है, तो उनके लिए किस तरह प्रयोग में आ सकता है?
0: इसकी यही विशेषता है सर कि वो क्या करेगा, चाहे आपका खेत एक बीघे का

0: की दवाई मिलाई जाती है। तो जो भी दवाई आपको मिश्रण करना है आप बाहर करिए, उसको अच्छे से मिक्स करिए, टैंक में डालिए और टैंक उसको अपने आप छिड़काव करेगा।
1: आखिर में डॉक्टर गोयनका जी, हमारे किसान भाइयों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि नई तकनीक अपना के किस तरह हम उत्पादन बनाएं और किस तरह पैसे को बचाएं?
0: जब भी नई तकनीक आती है, दुनिया के किसी मुल्क में जाइए, शुरुआत में मुश्किल लगती है। जैसे मोबाइल था, कितना मुश्किल लगता था। आज एक साल का बच्चा भी जो है घर में पैदा होते ही मोबाइल चलाने लग जाता है। सेम चीज टेक्नोलॉजी।

0: और इसी के साथ हमारा आज का कृषि जगत कार्यक्रम समाप्त होता है। सुनने वाले सब बहन भाइयों को
1: राम
0: राम
1: राम। इस
0: राम।
1: कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता तुषार पराशर और संयोजक थे शिवनंदन लाल।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कृषि जगत। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। आइए अब से कुछ ही पलों में आनंद लेते हैं गीत और गजल के हमारे कार्यक्रम का। इसके अंतर्गत आज आपको सुनवाते हैं चंद खूबसूरत सी गजलें।

0: सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30 लाख से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
1: हर घर सूर्य घर।
2: नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रदर्शनों में शामिल विद्यार्थियों के खिलाफ कोई प्रतिकूल कानूनी कार्रवाई न करने का फैसला किया। दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर को विरोध प्रदर्शनों के लिए बंद या सील करने की अफवाहों को खारिज किया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता कल पूर्वी विनोद नगर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में विद्या वाहिनी साइकिल वितरण अभियान का शुभारम्भ करेंगी। दिल्ली नगर निगम और ऑयल इंडिया लिमिटेड ने तेहखंड तथा ओखला में प्रतिदिन 800 टन क्षमता के कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र स्थापित करने के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। और दिल्ली प्रीमियर क्रिकेट लीग का तीसरा संस्करण कल से अरुण जेटली स्टेडियम में शुरू होगा। अब समाचार विस्तार से। दिल्ली सरकार ने फैसला लिया है कि नीट परीक्षा में कथित अनियमितताओं के विरोध प्रदर्शनों में शामिल विद्यार्थियों के विरुद्ध कोई प्रतिकूल कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। ये फैसला

रिकॉर्ड बिल 2026 लाने जा रही है। इस कानून के लागू होने के बाद पूरी दिल्ली की प्रत्येक संपत्ति का वैज्ञानिक सर्वे कर उसका डिजिटल रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा। इसके बाद प्रत्येक संपत्ति के लिए विशिष्ट प्रॉपर्टी आधार कार्ड बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि जिस प्रकार आधार कार्ड ने प्रत्येक नागरिक की पहचान को एक विश्वसनीय स्वरूप प्रदान किया है, उसी प्रकार अब दिल्ली की प्रत्येक संपत्ति की भी प्रमाणिक और सुरक्षित डिजिटल पहचान सुनिश्चित की जाएगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। दिल्ली सरकार कल से छात्राओं के लिए

0: मध्यम उद्यम अब रक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। वायुसेना और भारतीय रक्षा निर्माता सोसाइटी SIDM द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित स्वदेशीकरण विषय पर आधारित संकल्प नामक एक कार्यशाला के बाद श्री सेठ ने कहा कि सरकार का एकमात्र उद्देश्य रक्षा क्षेत्र को स्वदेशी और आत्मनिर्भर बनाना है।
1: 74,000 स्पेयर्स एयरफोर्स के जो इंडिजिनस हो गए, तो लक्ष्य है हमारा, एकेडमिया, हमारा साइंटिस्ट, और कहते हैं ना कि जितना ज्यादा

न्यूनतम तापमान 25 से 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। दिल्ली प्रीमियर लीग का तीसरा संस्करण कल से 30 अगस्त तक अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। उद्घाटन मुकाबला सेंट्रल दिल्ली किंग्स और पुरानी दिल्ली 6 के बीच होगा। इस T20 टूर्नामेंट का आयोजन दिल्ली और जिला क्रिकेट संघ द्वारा किया जा रहा है, जिसमें 8 पुरुष टीमें और 4 महिला टीम खेलेंगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली सरकार ने नीट परीक्षा में कथित अनियमितताओं के विरोध प्रदर्शनों में शामिल विद्यार्थियों के खिलाफ कोई प्रतिकूल कानूनी कार्रवाई

आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल, आइए आप सुनते हैं कार्यक्रम गीत मालिका, जिसके अंतर्गत आज हम प्रयोग कर लाए हैं आप सभी के लिए खूबसूरत से गीतों की लड़ी। और आइए शुरुआत करते हैं किशोरदा और लता जी की इस प्यारी सी आवाज के साथ।

0: Let's see. Peshkash.
1: दोस्तों, आज इस महफिल में कई मस्ताने हैं, एक शम्मा, दो परवाने, एक हसीना और दो दीवाने हैं, लेकिन एक है हीरो और एक है जीरो। अब आप ही बताइए, कौन है हीरो और कौन है

0: कल पारित कर दिया था। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने विधेयक पेश किया। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि विधेयक के अंतर्गत जांच 2 महीने के भीतर और आरोप पत्र दाखिल होने के बाद 3 महीने के भीतर मुकदमा पूरा किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि विधेयक देश के विद्यार्थियों और युवाओं के कल्याण की रक्षा के लिए सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है।
1: प्राइम मिनिस्टर मोदी जी लॉस्ट नो टाइम।
2: प्रधानमंत्री मोदी ने बिना समय गवाए घोषणा की है कि छात्र

बहुमूल्य भारत पहल को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि भारत के पास एक असाधारण पर्यटन गाथा है जिसे सरकार और इंडिगो मिलकर दुनिया के सामने पेश कर रहे हैं। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश की 3 विधानसभा सीटों के लिए आज हुए उपचुनाव शांतिपूर्वक संपन्न हो गए। बिहार की बांकीपुर, गुजरात की मंजलपुर और मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीटों पर मतदान हुआ।

0: मध्य प्रदेश और राजस्थान के कुछ भागों में अगले 2 से 3 दिन तक रहने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज संसद भवन में अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड के सांसदों से भेंट की। इस दौरान दोनों राज्यों में आई बाढ़ की स्थिति पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार बाढ़ की स्थिति से निपटने में राज्यों की सहायता करना जारी रखेगी। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं मनोज पाठक।
1: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 274

0: मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी। ओडिशा में बाढ़ की स्थिति गंभीर। और राष्ट्रमंडल खेलों में भाला फेंक में नीरज चोपड़ा, रोहित यादव और यशवीर सिंह ने तथा ट्रिपल जंप में प्रवीण चित्रवेल और शिल्वा प्रभु ने फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय।

उन्होंने इल्जाम लगाया कि गांधी खानदान की क्यादत वाली कांग्रेस हुकूमतों ने वंदे मातरम को कभी मुनासिब एहतराम नहीं दिया। बिल की मंजूरी के साथ ही लोकसभा की कार्रवाई कल सुबह 11 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी गई। राज्यसभा ने आज पब्लिक इम्तिहानात में गलत तौर तरीकों की रोकथाम से मुतालिक तरमीमी बिल 2026 पर गौर व खौज किया और इसे मंजूरी दे दी। लोकसभा ने कल इस बिल को मंजूरी दी थी। दोपहर के खाने के बाद जब ऐवान की कार्रवाई दोबारा शुरू हुई तो अहलकार

होगा, उन्हें कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। महकमा दाखला ने कहा कि अगर इन मामलों में कोई गिरफ्तारी या हिरासत में लेने की कार्रवाई की गई है तो गिरफ्तारियों पर नजरसानी करने और गिरफ्तार शुदा अफराद को रिहा करने के लिए कार्रवाई फौरी तौर पर की जाएगी। महकमे ने कहा कि दिल्ली सरकार एहतजाज में शामिल अफराद के खिलाफ किसी तरह की मजीद मनफी कार्रवाई करने की तजवीज़ नहीं देती और यह मामला इस सिलसिले में मजीद कोई कार्रवाई किए बगैर खत्म समझा जाना चाहिए। इसने मजीद कहा कि

0: किस दर्जा दिया साथ, मेरा इश्क नबी ने रोजा है जहां खुद को वहीं देख रहा हूं। किस दर्जा दिया साथ, मेरा इश्क नबी ने रोजा है जहां खुद को वहीं देख रहा हूं।
1: दिगान अजीज, आखिरीन तराने ये रूहानी बेसदा ये उस्मान खान व हम नवायानश रा पेश शनवीद।

0: एक वीडियो संदेश में श्री मोदी ने कहा कि पिछले कई दशकों से केंद्र और विभिन्न राज्य सरकारों के सामने प्रश्न पत्र लीक होने की समस्या रही है, जिससे लाखों विद्यार्थियों का भविष्य प्रभावित हुआ है। श्री मोदी ने कहा कि पारदर्शी और प्रौद्योगिकी आधारित परीक्षा प्रणाली, पेपर लीक के खिलाफ सख्त कानून तथा परीक्षा माफिया के विरुद्ध कठोर कार्रवाई विकसित भारत की मजबूत नींव रखने के लिए बेहद आवश्यक है।
1: देशव्यापी सभी राज्यों में भी और केंद्र में भी शिक्षा पद्धति में सुधार अनिवार्य हो गया है। टेक्नोलॉजी के भरपूर उपयोग की आवश्यकता हो गई और साथ साथ फिर से कोई पेपर माफिया, पेपर लीक करने वाली गैंग, देश के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाली गैंग, उनको बख्शा नहीं जाएगा। इसलिए कठोर कानूनों की भी जरूरत है। हम संसद में बिल लेकर के गए थे। गत दो दिन संसद के दोनों सदनों ने, अधिकतम माननीय सांसदों ने विस्तार पूर्वक उससे चर्चा की है और आज दोनों सदनों ने इस कठोर कानूनों वाले, प्रावधानों वाले इस बिल को पास कर दिया है।
0: संसद ने राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक का उद्देश्य वंदे मातरम को राष्ट्रगान के समान वैधानिक संरक्षण प्रदान करना है। वंदे मातरम के अपमान पर 3 वर्ष तक की कैद, जुर्माना

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़। प्रोग्राम है गीत सुहाने और मैं हूँ आपके साथ सुरभि। और चलिए आगाज़ करते हैं कश्मीर की कली फिल्म के इस गाने के साथ। रफ़ी साहब और आशा भोसले की बेहद खूबसूरत आवाज़ों में सुनते हैं ये गीत।

का एफएम गोल्ड चैनल 104.1 मेगाहर्ट्ज़। मोहब्बत की सबसे खूबसूरत बात यह होती है कि उसमें मिलने वाला दर्द भी अपना सा लगने लगता है। कुछ जख्म ऐसे होते हैं जिन्हें भरने की नहीं बल्कि उम्र भर महसूस करने की चाह होती है। जी हाँ, जब रात में खामोशी आ जाती है और ऐसे में दिल बस उसी एहसास को फिर से जीना चाहता है, उस एहसास

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। संसद ने लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने इस विधेयक को मंजूरी दे दी। लोकसभा ने इसे बुधवार को पारित कर दिया था। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि ये देश के हर नागरिक और विशेष रूप से युवाओं के भविष्य

सांस्कृतिक विरासत, राष्ट्रीय पहचान और स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों का प्रतिनिधित्व करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया की स्थिति की समीक्षा के लिए मंत्रिमंडल की सुरक्षा समिति की बैठक की अध्यक्षता की। श्री मोदी ने नाविकों सहित लोगों के हितों की रक्षा के लिए सभी घटनाक्रमों की नियमित निगरानी के लिए एकीकृत और समन्वित व्यवस्था बनाने को कहा। सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली सरकार को

रात सुरमई प्रोग्राम लेकर हाजिर हूँ मैं सुरभि और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz। और चलिए रात सुरमई का आगाज करते हैं इस गीत के साथ।

संपत्ति जब्त करने का प्रावधान है। चर्चा की शुरुआत करते हुए विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि कांग्रेस विधेयक का समर्थन करती है, लेकिन इसमें पेपर लीक रोकने के लिए और अधिक प्रभावी प्रावधान होने चाहिए थे। चर्चा के बाद राज्यसभा ने विधेयक ध्वनिमत से पारित कर दिया। इसके बाद सदन की कार्यवाही आज सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि

अनुमति है। राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के भारोत्तोलक लवप्रीत सिंह ने पुरुषों के 110 किलोग्राम भार वर्ग में 388 किलोग्राम भार उठाकर रजत पदक जीता है। लवप्रीत मात्र 1 किलोग्राम के अंतर से स्वर्ण पदक से चूक गए। उन्होंने स्नैच में 176 किलोग्राम वजन उठाकर नया रिकॉर्ड बनाया और क्लीन एंड जर्क में 212 किलोग्राम का वजन उठाया। मौसम विभाग ने आज गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में अत्यधिक मूसलाधार वर्षा के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर। मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त भारती, और समय हो गया है प्रोग्राम हमराही का। आपका प्यार भरा स्वागत करती हूँ मैं प्रोग्राम हमराही में। शुरुआत करते हैं प्रोग्राम की इस प्यारे से गीत के साथ।

कुछ रातें सिर्फ चांदनी की नहीं, यादों और एहसास की भी होती हैं। ऐसी रातें दिल के सबसे खूबसूरत ख्वाबों का संजो कर रखती हैं।

पेपर लीक और अन्य अनियमितताओं के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि नए कानून के तहत दोषी को 10 साल तक की कैद, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और संपत्ति जब्त करने का प्रावधान है। चर्चा की शुरुआत करते हुए विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि इसमें पेपर लीक रोकने के लिए और अधिक प्रभावी प्रावधान होने चाहिए थे। चर्चा के बाद राज्यसभा ने विधेयक ध्वनिमत से पारित कर दिया। इसके बाद सदन की कार्यवाही आज सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा

जम्मू कश्मीर पीओजेके में विरोध प्रदर्शन जारी है। इस सप्ताह की शुरुआत में पाकिस्तानी सुरक्षा बलों द्वारा नागरिकों पर की गई हिंसक कार्रवाई में 40 से अधिक लोग मारे गए हैं। कब्जे वाले क्षेत्र में स्थानीय अधिकारियों ने कथित तौर पर बुनियादी अधिकारों को मांग कर रही महिला प्रदर्शनकारियों को भी निशाना बनाना शुरू कर दिया है। दो बार के ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा राष्ट्रमंडल खेलों में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा के फाइनल में पहुंच

एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर। प्रोग्राम है अरुणिमा। जी हाँ, स्वागत करती हूँ आप सबका। और शुरुआत करते हैं कार्यक्रम अरुणिमा की इस प्यारे से गीत के साथ। गीत है फिल्म राजपूत से मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, गीतकार आनंद बख्शी।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार विश्वसनीय शिक्षा प्रणाली स्थापित करने के लिए लगातार कदम उठा रही है। सोशल मीडिया पर वीडियो संदेश में श्री मोदी ने कहा कि पिछले कई दशकों से

क्षेत्रों में भारत समर्थित परियोजनाओं की प्रगति और कार्यान्वयन की समीक्षा की गई। दूतावास ने बताया कि विदेश सचिवों ने हरित अवसंरचना और खुले स्थान परियोजना के अंतर्गत निर्मित थिम्फू पारिस्थितिक पार्क और ओलाखा पार्क का वर्चुअली उद्घाटन किया। पाकिस्तान के बलूचिस्तान सूबे में कल कोयले खदान में विस्फोट से 18 खनिक मारे गए और 24 अंदर फंस गए। प्रांतीय राजधानी क्वेटा के बाहरी इलाके में स्थित खदान में मीथेन गैस भर जाना विस्फोट का कारण माना जा रहा है। सूत्रों के अनुसार 18 खनिकों के शव निकाल लिए गए हैं। अन्य कर्मियों की तलाश के लिए राहत और बचाव अभियान जारी है। पाकिस्तान के कोयला खदानों में हवा आने जाने का समुचित मार्ग न होने तथा निगरानी और सुरक्षा प्रणाली के अभाव

सक्रिय रखती है, अकड़न जकड़न से दूर रखती है। अर्थात आप सब समझ गए होंगे हम बटरफ्लाई की बात कर रहे हैं, तितली अभ्यास की बात कर रहे हैं। तितली आसन नहीं कहा जा सकता क्योंकि इसमें मूवमेंट है। तितली वाला अभ्यास हम करने का प्रयास करेंगे। तो इसके लिए कुर्सी पर तो हम बैठ नहीं सकते, आवश्यक है एक प्लेन स्थान का चुनाव करके सीधे बैठ जाए। अपने दोनों पैरों को आगे फैलाएं, दोनों हथेलियों को जंघा के बराबर में रखें, पैरों को थोड़ा हिला लें, आगे पीछे मूव कर लें, पैरों में थोड़ी

कर रहे हैं। तितली आसन नहीं कहा जा सकता क्योंकि इसमें मूवमेंट है। तितली वाला अभ्यास हम करने का प्रयास करेंगे। तो इसके लिए कुर्सी पर तो हम बैठ नहीं सकते, आवश्यक है एक प्लेन स्थान का चुनाव करके सीधे बैठ जाए। अपने दोनों पैरों को आगे फैलाएं, दोनों हथेलियों को जंघा के बराबर में रखें, पैरों को थोड़ा हिला लें, आगे पीछे मूव कर लें, पैरों में थोड़ी शिथिलता दूर हो जाएगी, रिलैक्स हो जाएंगे। एक दाहिने पैर को बाईं जंघा के ऊपर उठा के रखें और धीरे धीरे घुटने को पकड़ के एक दाहिने हाथ से दाहिने घुटने को पकड़ें और बाएं हाथ से पंजे को पकड़ के ऊपर नीचे हिलाएं, ऊपर नीचे करें। श्वास के साथ श्वास लेते हुए नीचे की ओर दबाएं, श्वास लेते हुए ऊपर की ओर लाएं। कम से कम 15 आवृत्ति ऊपर नीचे 15 बार उसको घुमाएं, ऊपर नीचे करें। ऊपर करते समय अपने वक्ष तक मिलाएं और नीचे ले जाते समय धरती से मिलाएं। 15 आवृत्ति के बाद वापस आ जाएं। इसी क्रिया को फिर दूसरे पैर से दोहराएं, यानी कि दाहिना पैर सीधा और बायां पांव आप उठा करके दाहिनी जंघा के ऊपर रखें, दाहिने हाथ से पैर के पंजे को पकड़ें और बाएं हाथ से घुटने के ऊपर दबाएं, प्रेशर डालें, अर्थात श्वास लेते हुए नीचे की ओर ले जाएं घुटने को और श्वास छोड़ते हुए अपने वक्ष की तरफ लाएं। इस आवृत्ति को भी कम से कम 15 बार दोहराएं। ऊपर नीचे करेंगे तो आप अनुभव करेंगे कि खुलने

दोनों पैर के पंजों को मिलाएं, धीरे धीरे खींचते हुए अपने पेल्विक रीजन की तरफ, जंघाओं की तरफ लाएं, पैर मोड़ दें, सुखासन जैसे अवस्था, लेकिन दोनों पैर के अग्रभाग मिले हुए, और दोनों हाथों से पकड़ लें अग्रभाग को, पैर के अग्रभाग को दोनों हाथों से पकड़ लें, अपने पेल्विक फ्लोर के ज्यादा से ज्यादा एड़ियों को

दूर होती जाएगी। और मैं विशेष रूप से कहना चाहूंगा अपने देश और विदेश की माता और बहनों से कि उन्हें तो यह अभ्यास रोज करना चाहिए। ये महिला जनित रोगों से मुक्ति दिलाने वाला अभ्यास है। जो महिलाओं को, मेरी माताओं बहनों को प्रॉब्लम होती है मेंसुरेशंस के दौरान, पीरियड के दौरान, और भी कोई महिलाओं के रोग हो सकते हैं, गायनी प्रॉब्लम हो सकती है, उन सब में लाभकारी अभ्यास है ये तितली का अभ्यास। तितली की क्रिया आप दोहराएं और अपने पेल्विक फ्लोर को ज्यादा से ज्यादा शक्तिशाली बनाकर पूरे जंघा को, पैरों को शक्तिशाली बनाएं और जीवन का शक्तिशाली होते हुए ही आनंद